0: करकना। राजी गुरु भला सर फोन बिली का बांधे सुख मलगरी दी और कम जैना राज मलगरी दी। अस्सलाम वालेकुम। आवाज में दर्जी सिंह खोरे तबियत दे खदे बराबर ही था बदबल चा आवाज पके रालो दास्तान रालो का जमा तरफ ना दरालो या खेरु को रचार था सूखी ना
1: ना
0: चाकाल में अटेंड करे स्टाक काल में अटेंड करे मरवा सिंह गए खोरी तबियत देख दे बराबर
1: बिल्कुल
0: देखल को तुम्हें खबर ही सही उकड़े ता वावरे दे दरोग बने वे रिशा रिशा वाय ता जमा खबर ही वावरे दे
1: ना
0: मड़ा दा पेले में देखल को तदा खबर ही उकड़े
1: टोले
0: दे वोरे दे ता दे खुदे हुए जो टोले दे वोरे दे
1: आओ जी कपड़े में मिल जले आओ मोबाइल में दगा से पटकी के वो पाग में रेडियो लगा
0: मोबाइल
1: मोबाइल
0: हाँ मोबाइल मोबाइल वो ले जनानम पटकी वही इस्ता सुधा इलाके दल तक उसे अब सड़ी पटकी वही मुलियान साहिबान ज्यादातर आओ याद आ मशरान पटकी वही जनानम पटकी वही खा खा माशाल्लाह सही था जबरदस्त और कपड़े दिन विंजले डेर बेवक्त दे कपड़े ने विंजले और एशमा सरफो बांधी विंजे का ना सबल से दे रोड़ी हाँ माशाल्लाह एशमा वॉशिंग पाउडर दे खोख दिया उड़ेर ज्यादा खेसते दी
1: चाची
0: गाने दे दो दी मोर दे आवादा
1: आओ
0: जी द्रे वाणो इश्मा सरफ खोख दी
1: चाची गाने में द्री दी
0: खा चाची गाने दी द्री दी
1: आओ जी
0: आओ मोर दे आवादा सलूर श्वल आओ द सलूर वाणो इश्मा सरफ खोख दी माशाल्लाह
1: आओ द टूल माशाल्लाह देर ज्याद खोख दी और द कदेर खैस्ते
0: दी सही दा आवाज दे कटकी गी खां जेब न बदले खा खा सिग्नल मसाला तो सिग्नल इम पे जानी जे बदल का आवाज दी कटकी गी खां मरवा बस यो बल तब दुआ गाने को खोरे अल्लाह दे खुशाल का बस कपड़ी विंजा औजान लजड़ो मचा हुआ प्रोग्राम हुआ और सही था
1: सही शो, बस खबर
0: कटकी की आओ कना उखियार खलक उमदा सी लका मा था गोरा ना सॉरी मैं जान था गोरा
1: जी
0: बस तारीफ में तारीफ को डेरा ज्यादा मनाना खुशहाल उसे डेरा ज्यादा मनाना खा मरवा डेरा मनाना खुशहाल उसे मरवा जमा डेरा खोके खुरमा सर मलगिरी गुरु बल्ला सर द फोन बिली का पानी सूख दी और कम जैन रा सरा मलगिरी दी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: पक्का बच घूरी वाला से ताल्लुक रखने वाले मेरे प्यारे भाई नादर खान समोसा नादर खान अक्सर खलक दस्ता पशान चे खुराक वाला अर्स खरसई का
2: ना
0: नुदी बिया चुटिया ने कही चुटिया ने पदे लो अख्तर के
2: ना
0: चुटिया ने न कवे तो सख्त का ना कस्टमर सब मुंग लखा मखा मर चकी लगे पिकौड़े ब लगे चाट ब लगे
2: बिल्कुल ना खबर
0: दा खबर खुद सही दा खबर अदी सही दा चित आवाजी लोबिया चोले या समोसे वो खरसोलो वाला या दुकानदार नहीं या चाट बल्कि ता उस दा इश्मा हम यो डीलर है नो दा खबर दे पगुल बदला दा
2: खाना
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त अवदारा तो हुआ है मरीज वो सिंगर है बस पल अखबारी का वही अल्लाह रब्बुल इज्जत दे और नसीहत और की कल कलदासी की गई
2: ना
0: बिल्कुल बाकी द इंसान सुमर जवन दे दा अल्लाह ता पता दा ससर टिकी की दा अल्लाह ता पता दा हाँ जमा खो गरोरा प्रोडक्ट खराब आंदी समूंगा नादर खान
2: अल्हम्दुलिल्लाह حاجی سے بالکل بل ما یو ملګر دا دا ویټرنری ډاکټر دا ویټرنری دا د نوموره ډاکټر صحیح
0: آ واو
2: مونکله سولم دی او دا اوس ډاکټر دی هغه راغله او هغه ویل چې ما چې کله دا کوم د نوور چې جیوی کنه ناس کې او زما خپله د کلیپ پیل شي دا کومه دوایي ده چې جی د نوور هغه ته ان پاتې زه ايش ما خر بلای نو ته ولیکو
0: زبردست
2: الحمدلله دا مت ریزلټ بسونه زیات راغله بیا ماته بیا خلک راځي چې دا دوایي بیا راته

हाँ जी कॉल बता सको वाइप 0336 9000 बने आओदे सर सराम 100 रुपए बेटी सेल बने होम कॉल कवली शिप 0927 291 292 बने यानी 0336 देसरा 9600764।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। मेरे बहन भाइयों, बच्चों बच्चियों, सिर्फ एक हदीस आपको सुनाता हूँ, सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे और आप मुआशरे के बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अरबों एजा कानत फीक मा दर्रक मा फातक मन दुनिया, कि मेरी उम्मत चार बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी तुम्हारी। हिफ्ज अमानतन, सिद्क हदीसन, हुस्न खलीकतन, इफ्फतन फी तुमतन। चार बात फरमाया कि मेरी उम्मत किसी को धोखा ना देना, सुभान अल्लाह, किसी को धोखा ना देना, बद्दयानती ना करना। दूसरा फरमाया सिद्क हदीसन, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुना कर सकता है, दो नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो झूठ ना बोलो, सच बोलो अल्लाह के वास्ते। तीसरी बात फरमाई हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे कर लो। और अच्छे अखलाक का एक लफ्ज है बर्दाश्त, लोगों की बर्दाश्त करो, नेगेटिविटी बर्दाश्त करो। चौथी बात आपने फरमाई इफ्फतुन फी तुमतिन, कि रिज़्क हलाल कमाओ, हराम ना कमाओ, हराम चीजों का कारोबार ना करो, उससे कभी चैन नहीं आता।
0: करक और उसके मजाफात में अजान जोहर का वक्त हो चुका है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

0: अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया। पाकिस्तान में इंतहाई कम मार्कअप पर रोशन अपनी कार से गाड़ी हासिल की और अपनों की जिंदगी में खुशियां फैलाई। आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करें और रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।
1: द करक अनूर शो खल को द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक की द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दों की कहानी त्रिख की कहानी बेओलादी बावसीर मेदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगी दिल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़नी बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पर शमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह आचा से अपना खवलिश है। सूखची डी चिमिस बी चिमिस आर चिम्पी और नूर सनदुना तरला से कौन की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबेता उकड़े 0331-52-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजीत मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाएं और माशरे को जोड़ने में हमारा

0: नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालय द मरगानो फग आवाजुना आओ द फिजा ताजा सुकून दा वक्ते चिखपल जरत सुकून वरकड़े औखपल व्रज पख सोच सरा पेल कड़े राजे चे योशु द खुशाले द मुस्का और मुस्बतु खबर सरा तासो अवरे रेडियो अमन 88.4 कारक
1: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे संदर दिलगावली दीदा सशाई वोरवे
2: MSD 88.4
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल 88.4 बंदे खोजा खोजा प्रोग्रामीना ख्वाजे ख्वाजे सांदरे अवरे दाई से

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

Okay, जी, let's see next caller. जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. काल मिलाओ तो खबर वक है. हेलो. ओके जी, जी खबर इन्हें कवा ठीक से बल कलर तो मुकाबिर को जी. हाँ, इधर पाकिस्तान शहर होगा.

0: मैसेज के वाली डॉक्टर सिवना डॉक्टर जाकिर शाह बचा सिवना तो सौ प्रश्न गलवाड़े मतलब मेंटली तो मतलब टिक नहीं या दिन नूर नूर बीमारी मतलब मरीज आंदी आगे बेहतरीन चुकम दे नंबर चुकम दी व्याह तो पदे नंबर मल्क वाली 0331 52 65 340 बने कॉल के वाली रजम डॉक्टर से पदरबानी डॉक्टर जाकिर शाह से प्रोग्राम की एंट्री ज्यादा हरकले अस्सलाम वालेकुम
1: जबरदस्त गर्मी
0: जी जी बिल्कुल करेक्ट माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन लगा मौसम ठीक नहीं और मतलब नफसियाती लिहाज से सही नहीं
1: बिस्मिल्लाह।

चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर द ईरान सदर सर मुलाकात करे दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 13 रोज ईरान पर दौरा तलले दे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान दर और हुकूमत तेहरान के दे ईरान सदर मसूद पजिश्कियान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराकी सर मुलाकात करे दे द मीडिया रिपोर्टर मुलाकात के द्वारा तलुकात और अमरीकी सर जारी मुज़ाकरात मुतलिक अमूर बंद खबर शिवि दी द मुलाकात पर दौरान वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी हम मौजूद हो मीडिया रिपोर्ट की वाली शवि दी च मुलाकात के तकी ज्यादा शवि कशीद के महनवी और जरी तनाज़े हतम को लोला पर मुख्तलिफ सफारती इकदामातों बंद खबर शवि दी ईरान और अमरीकी पमास के कशीद के कम को लोला पर जरी सफारती कोशिशों बांधे तबादला ख्याल शवा द पाक फौज शुबे तलुका त्यामा इस प्यार तर महा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान और अमरीकी पमास के सलीसे कोशिशों सिलसिले की 13 रोज तेहरान तरसीदली दी अतविश्तमानी तरमीम महनवी लपारा पेटीआई मुतरक शवेदे वजीर सोहेल अफरीदी पनोम बिलावल भट्टो खसूसी पैगाम रगले दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजवजा अतविश्तमानी तरमीम महनवी लपारा सियासी रबिती तेजी कड़ी दी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान सराय रबिती कड़ी दी वजीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी दवा अमल के जवर किरदार अद कवी मुख्तलिफ सियासी जमातों यो मुतफिका हिकमत अमले बांदे इतफाक कौलो लपर सरगरम दे वज़ीर आला सोहेल अफरीदी 13 हफ्ता पर दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरा मुसलसल 3 अहम मुलाकातों कर दी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पमास के तविश्तम आईनी तरमीम मामले बंद यो मौका अख्तियार कोलो कोशिश की मीडिया रिपोर्ट की वाली शवि दी द्वार जुम्मतों मामले बांधे यो हथपुरी नियुक्ति शवि पयोशमेर नौकातों बांधे इतफाक पैदा शवि दी चिदाहन बाद बिलावल भट्टो सरदारी खसूसी पैगाम 13 रोज वजीर सोहेल अफरीदी तरागले दे ओले बल खो वजीर सोहेल अफरीदी द जमीयत उलमा इस्लाम से मशहर मौलाना फजल रहमान सरा 13 रोज मुलाकात कर दी मुलाकात के मुल्क मजमू और की सियासी सूरत हाल उन्हें लवातविश्तमानी तरमीम मुमकिन असरातों और हवा खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमले बांदे तफसी खबर शवि दी द्वारो रहनुमाओं पमास के रबते जरी सतल बांदे इतफाक शवि दी वजीर अजम शहबाज शरीफ सलोर रोजे दौरे बंद चीन तरसीदले दे चीन वजीर अजम और सदर सरब मुलाकातों कवि शहबाज शरीफ व पाक चीन सफारती तालुकातों पिंजाविया सालगिरह तकरीब के हम शिरकत कवि वजीर अजम शहबाज शरीफ सलोर रोजे नए दौरे वाले नए मरहाले के गांगशो तरसीदले दे गांगशो सदर वजीर अजम शहबाज शरीफ इस्तकबाल करे दे वजीर अजम शहबाज शरीफ चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी फेज 2 लांदे मुनकिदा बिजनेस फोरम की शिरकत कवि पदे मुकाबा चीन कम नयो सीईओ वजीर अजम सर मुलाकातों कवि वजीर अजम व मुख्तलिफ माहिदों और मफाहमती दश्तों तबले तकरीब के हम शरीक कीगी अली बाबा ग्रुप हेडक्वार्टर दौरा बहम कवि वजीर अजम शहबाज शरीफ पर बीजिंग के द चीन वजीर अजम और सदर से मुलाकात कवि चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज दौरा बहम कवि बनू के सिक्योरिटी सूरत हाल वजह बनू पुलिस जदीद जंगी आलात फरहम करी शवि दी जिपाई के एंटी ड्रोन गन्स और नाइट विजन आलात शामिल दी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद दबदम ने खिलाफ जारी जंग की बनू पुलिस ऑपरेशनल सलाहतुनो नोर मजबूत जुड़ोल पारायोघट और अहम फैसला कर दिया खसूसी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जारी कर दी द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आज हिदयातों बांधे सूबे मुख्तलिफ जिलों और सेंट्रल पुलिस दफ्तर सीपीओ रिजर्व ने जदीद तरीन जंगी और तकनीकी आलात फुरी वापस अस्तल उसरा बनू पुलिस खोल कड़ी शिव दी बनू पुलिस का पमजमय तोगा 500 जदीद तरीन आलात फरहम कड़ी शिव दी जिपाई के 45 अदद जदीद एस के यू आलात यो देश थर्मल वेपन साइट शल नाइट विजन डिवाइसेज फिजाई निगरानी और इंटेलिजेंस मालूम हासिल कोलोला पारा 15 आम क्वाडकॉप्टर और यो जदीद सर्वेलेंस क्वाडकॉप्टर बनू पुलिस खोली कड़ी शिविदीप और देसरा द्वा जदीद तरीन एंटी ड्रोन गन हम बनू पुलिस तौर की शिविदीप अवले बलखो बनू दगट तबाही न बचकड़े शविदे लस किलो वजनी बम नकारा जोड़ शविदे पुलिस पोहत करवाई कवल उसरा बनू दगट तबाही न बचकड़े दे बनू ताना केंट हदूद के गुलजमान मस्जिद और बनू मीरन शाह रोड सरनीस दे लगोल शवे लस किलो वजनी रिमोट कंट्रोल बम पुलिस पोहत और मसर करवाई कवल उसरा नकारा जोड़ कड़े दे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ईद पमुका सलोर चोटा ऐलान करे दे इमरजेंसी और रेस्क्यू दरे बखल शेड्यूल मुताबिक कार कवि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गट अख्तर पमुका सलोर चोटा ऐलान करे दे खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरी द चोटा बारे के नोटिफिकेशन जारी कर दे द रतलुन की मंगल पाकिस्तानी नब जुमे और रजीनाविश्ता मिनटे पूरे सरकारी चोटाई भी टोल सरकारी दफ्तरों न तलीमी दरों की बात चोटाई भी इमरजेंसी और रेस्क्यू दरे बखल शेड्यूल मुताबिक कार कवि वजह

0: बिल्कुल प्रोग्राम से मैसेज ना देर जो तुरगली आ सुंदर तसे मेला इच्छा जे प्रोग्राम से मैसेज ले देर जो तो मानना ना देखे ना सब ये क्या ना अच्छा मोल फास्ट एसएमएस हो और शामिल कराए देनो देर जो तमन्ना सरल देर जो तमन्ना वो बिल्कुल विनर चिकन निकला विनर विनर विनर चिकन हम नशनाम साइड हो मौज मस्त स्टार दो वैसे मैं क्यों तुझे खाने मिलती भाई हम नशनाम जीरी यानी मौज मस्त स्टार को बहुत बहुत मुबारक सेकंड यानी नीला बिठानी को तर ये नूर एंड अनिक हॉस्पिटल सलाम देर जो तमन्ना
1: तुरे गानम रंगे ब्या गिले दे मोना बोले चार चार मलांगे
0: अच्छा दाट के ब्या उरवे केना
1: रे गान से खाली गाय
0: ओए हे आहा राज भाई उरवा राज भाई उरवा।

पक लो वैसे मेथी भाई तेरे हफ्ते के मौज मस्त स्टार बम उतर लालवा अच्छा साइड ओडे रुस तमना बिल्कुल बम उतर लाला विनर वा यो जहान मन दइंदा से रुपस ने कवे कना हो बिल्कुल अबल उरन में ना दे आ के भैया संदर और से नो के भैया संदर वेटा पीपल के नो के भैया वाले सरोवर खटको नहीं बोले तुसे पनो मने।